पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असां खे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि उनमें इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: अजरक के रंगों से रंगी
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: गर्द मार जी वाया दहशत गर्दन जो एक थाक वे तबाह बारूदी मवाद बेहद कर रहे हैं। नवाज लीग पारा इफ्तखार गिलानी के आजाद कश्मीर जो वजीर आजम बनाने जो फैसलो वजीर आजम हाउस में मुशावरत बाद इफ्तखार गिलानी के वजीर आजम बनाने जो फैसलो किया। बैरिस्टर इफ्तखार गिलानी टेक्नोक्रेट सीट से चूंड किया। आजाद कश्मीर के नए वजीर आजम की चूंड सुभाने थी। कतरी वजीर आजम ईरान के अहम दौरे से अज तेहरान पहुंचन। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान सानी ईरानी सियासी अस्करी क्यादत से मुलाकातू कद। अमेरिका ईरान विच में जारी चिटाण के खात्मे समेत खिते की सूरत हाल से गालू क्यों वेंदू। अब नहर मुंसी बहाली वो मामलो भी गौर है।

0: जिला के सोबतपुर वेझो फुर मजामत सब्जी विक्रो कंदड़ पोरेत गोली हणी कतल लेरा मुराद खान जमाली जे इलाके हासिल बाल हथियारबंदन न्याज खाणी के जरमाल बनाए मजामत पोरेत के गोली हणी कतल कयो मोटरसाइकिल रकम खणी फरार थी वया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अक्सर वालदेन सवाल किंदा आहिन त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहो बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जिसकी तामीर पर होती है वाह वाह,
1: मजार है वो मीर मासूम शाह का,
0: शहर पर करता है राज
1: निराला है सक्कर बैराज, अय्यूब ब्रिज भी एक शाहकार है,
0: अलग ही यहाँ का शाही बाजार है,
1: रंग बिरंगे हैं।

चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। यू आर शेयरिंग इन टू रेडियो एफएम 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आज ही रुखसार सिंध की आवाज। अब ये कैसे हैं आप? आई होप सभी जी जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल टिप टॉप सर्कुल एक साउंड एकदम स्ट्रांग हल के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद है और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार है पूरे पूरे एक बजे तक। सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है जो कि आप सुनते हैं मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टू 1 पीएम आपका मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरती बड़ा खूबसूरत से साथ जो कि आज भी जारी है सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। तो प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो जी 11:25 पाकिस्तान के म्यारी बात तमाम तो लोगों की घड़ियों में बज रहा है। इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शा में है, कार में है, बाइक पे है, जिस पे भी जहाँ भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट एट द नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए, ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। खुदा खैरियत मतलब तो मेरी आवाज गली और शहरों, शहरों, शराहों, वादियों और पहाड़ों, दरियाओं और मरगुजारों, घरों और बाजारों, छोटी बड़ी कारों, मेरे पुरस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे जिंदगी गुलजार है। प्रोग्राम में इंक्लूड करने जा रही हूँ प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना और इस गाने को हम सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, गाने के साथ आगे चलेंगे और बताएंगे कि क्या होने वाला है। स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है।

0: GAFM 88 Network, Sindh ki Awaaz.
1: It's 11:30 AM. This soundtrack is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम.
1: अगर खूबसूरती खपे तो आर्श अपनायो. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो अवां जी सेंसिटिव स्किन के अंदर खां रिपेयर करे सिर्फ 3 दिन में. डार्क स्पॉट्स, एक्नी और स्कार्स घटाए स्किन के बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दिए शानदार मिरेकल ग्लो. कुदरती चमक और निखार जो बेहतरीन इंतखाब. आर्श ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट बाय आगास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड.
3: तहां भी पैंजो ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए ते ठाण चाहियो था जिते हो जे तहफुस जदीद सहूलियतूं ऐ मंजूर थियल सिक्योरिटी
4: तपोई भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
3: सखर शिकारपुर रोड ते
4: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल सामने
3: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थियल
4: एक शानदार ऐ काबिल एतमाद रिहायशी मंसूबो.
3: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर.
4: रिहायशी प्लॉट्स 80, 120, 150
3: कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज़ और 600 गज़.
4: हिते तमा के मिलन थी जदीद सहूलतूं
3: साफ में तो पानी
4: बिजली गैस
3: 24 कलाक सिक्योरिटी
4: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल आई सबका वडी गाल ही मंसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेजो आहे
3: जेको रिहायश आई सीड़पकारी बिनी लाए बेहतरीन मौके बनाए थो.
4: अजी पेंजी प्लॉट जी बुकिंग करायो
3: फौरी कब्जो आई फौरी रजिस्ट्री.
4: कॉन्टेक्ट
3: 03009317252
4: and 03132757860. Husaini Manzil Housing Scheme Sakhar.
3: Tawaje mehfooz mustaqbal and behtareen investment jo behtareen intikhab.
5: Yaar macha kya kithe vanya ghar mein vecho hai ha par theek hi naya shayad mujhe zindagi layak dawai nahi thi.
6: Jo bhala saath chala to ke saaf saaf utha maslo chahe.
5: Yaar ek maslo huje ta budhaya mujhe te maslan ji qatar lagal ahe na bhukh sahi लगे थी ऐ जे कुछ भी खावा थो त हजम ही न थो थे पेट फूक जी वने थो हथ पैर सुन थी वनन था ऐ सजो डी सुस्ती महसूस थे थी के कम जो रहंदो ही नाया.
6: यारे तुजा घणा न बस हिक ही मसलो आ
5: हिक इहो की है.
6: हां तुजो मैदो खराब आ छा तो न बुधवा मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त जे मादो सही न होदो त भूख भी न लगंदी न हाजमो थिंदो ऐ न ताकत मिलंदी
5: त पो मां छा के.
7: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है मगर इससे बचाव मुमकिन है. अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं. ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है. मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे. मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे.
8: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज.
9: डाडू सुठो
8: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
10: सिंध की आवाज.

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

जानी छो नजिया रे हर दुजिया हाथ जोड़ करे तो क्या तो कर कहजो हर दुजिया हाथ जोड़ करे तो क्या तो कर कहजो मां तुझो तुम जो मां तुझो तुम जो कहूं तुम जो दिल भर

आज का जो टंग ट्विस्टर है वो कुछ इस तरह से है कि आपने मुझे क्या क्या दिखाना है कि लंबी लकड़ी से लटके लाल नींबू लटके लंबी लकड़ी से, ठीक है, ये कहना है. और हमारा जो अगला सेगमेंट होगा 12 बजे के बाद, दैट इज हरा भरा पाकिस्तान. हरा भरा पाकिस्तान के बाद हम करेंगे बोलो तो माने सेगमेंट, ठीक है, तो ये हम करेंगे. और इसी के साथ हम न्यूज ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक दोनों की तरफ जाएंगे, ठीक है जी, इसी गाने के साथ. और वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुजार है.

0: सब घर सिंध का राज दुलारा शहर,
1: जिसे चूमती है दरियाए सिंध की हर लहर।
0: सक्खर के हर अंदाज से बसी आवाज, जीए सक्खर FM 88, सक्खर की आवाज,
1: जीए FM 88 नेटवर्क सिंध।

0: انتخاب فائزہ بیوٹی کریم اس میں شامل ہے آپ کی سکن
1: جی ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हों असा बार बार पे बार पोलियो का कतरा छो प्यारियों जो असा बार पैर पोलियो का कतरा पी चुको है. मुझो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल है. मां बार शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस. बार बार पोलियो का कतरा पीण से बार की इम्यूनिटी जो बेहतर थिए थी. हाँ जो कैंपेन अचे थी जैमें असा जो पोलियो जो डींदी उनमें का भी सुई इस्तेमाल नी बगैर कें दर्द के वैक्सीन जे बार के करा जी असो पाकिस्तान इन पोलियो जड़े मुझी मर्द में जो महफूज रहन.
3: सिंध के माथे का झूमर
0: जी एफ एम 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज़.

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: पढ़ाएं, लेकिन उनके साथ साथ उन्हें अमृत सरगिरों में भी शामिल करें। जैसे क्लास में अगर चंद पौधे खरीद करके कुछ असातिज़ा मिलते हैं या फिर बच्चे मिलते उन्हें पानी दें रोजाना के बुनियाद पे। और फिर एक और चीज भी हो सकती है कि एक ग्रीन कॉर्नर बनाएं और उस बच्चों की जिम्मेदारी रखी जाए कि भाई बारी बारी आप सबने इनकी देखभाल भी करनी है। तो इस तरह से देखिए तालीम अमली जिंदगी से जुड़ती है, तो बच्चे उसे ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। तो इसी तरह से हम ये एक्टिविटीज करेंगे तो बच्चे ज्यादा इनसे थोड़ा लगाव भी रखेंगे। जैसे कहते हैं कि भाई इलम के समंदर में अमल का एक कतरा अफजल होता है, तो भाई सिर्फ पढ़ना नहीं है, हम अगर उसको अमली तौर पर भी लेके आते हैं तो बिल्कुल बच्चा उससे सीखना शुरू करता है।
1: बिल्कुल जी, वेरी वेल सेड। एंड मुझे ये बताइएगा, क्या सिर दर्द लगाना काफी होता है या इनकी देखभाल भी उससे ज्यादा जरूरी होती है?
0: बिल्कुल, ये बेहतरीन है क्वेश्चन है आपका। मैं यही कह रहा हूँ कि काफी जगह ऐसा होता है कि पौधे लगा दिए हमने, बात खत्म हो गई, तो भी बात पौधे लगाने तक तो काफी नहीं है, असल काम तो उसके बाद शुरू होता है। हमें उसे पानी भी देना है, जानवरों से बचाना भी है, उसकी हिफाजत भी करना है, उसे वक्त भी देना है। तो ये एक पौधा बिल्कुल ऐसे टाइम रहता है जैसे एक बच्चे को हम पाल के बड़ा करते हैं। तो हमेशा मैं यही समझता हूँ कि पौधा लगाना एक वादा है और उसकी देखभाल उस वादे को पूरा करना है।
1: ओके जी, अच्छा आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो आप हमें ये बताइए कि बच्चे माहौलियाती आलूदगी को कम करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं?
0: हाँ, ये बेहतर क्वेश्चन है। इस पर थोड़ा सा मैं एक और टॉपिक से कंसर्न करूँगा और एक और चीज भी इसके अंदर है। मैं देखिए, अगर देहाती लाइफ को हम देखें तो वहाँ पे माहौलियाती आलूदगी बिल्कुल कम होती है। अब शहर की निस्बत में या फिर बड़े बड़े जो शहर है उनकी निस्बत में छोटे छोटे शहरों को अगर देखा जाए तो वहाँ पे बीमारियां कम होती है, आलूदगी कम होती है। अब आलूदगी का जो ज्यादा बढ़ना है वो बड़े बड़े सिटीज के अंदर है, क्योंकि वहाँ पे एक तो फैक्ट्रीज ज्यादा है। अब वहां से पैदा होने वाली आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए फिर हमें एक जो अहम किरदार होता है ना वो दरख्तों का होता है। तो वहाँ पे दरख्तों को लगाने के बजाय काटा जाता है ज्यादातर। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि अगर बच्चों को हम इस चीज के अंदर लेके आते हैं और बच्चे भी ये अपना किरदार अदा करते हैं तो वही दरख्त जब बड़े हो जाते हैं तो फिर माहौल के अंदर भी एक अच्छा एनवायरनमेंट पैदा हो सकता है।
1: बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हमें ये बताइएगा कि अभी रिसेंट अगर हम बात करें इस दौर की जहां हमें दरख्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो दरख्तों की कमी हमारे लिए कितना बड़ा मसला है इस वक्त?
0: मैम बिल्कुल, देखिए नई जो बीमारियां हैं, स्किन के मसाइल हैं, वायरसेस हैं या सांस की कमी है, इस तरह के ये मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि जो चीज़ इन चीज़ों से रोक रही है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। इन सब की वजूहत दरख्तों की कमी है। अगर हम दरख्त इस तरह से काटते जाएंगे तो ऐसे समझे कि एक तरफ दरख्त कट रहे हैं तो दूसरी तरफ इस तरह के मसाइल जो है वो बढ़ रहे हैं।
1: ठीक है। अच्छा जिस तरह आपने बात की कि बच्चों को एजुकेट करना चाहिए शजरकारी से रिलेटेड, तो आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से हम बच्चों को इस तरीके से एजुकेट करते हैं प्लांटिंग के हवाले से, तो उनको कौन एजुकेट करेगा? मेरा आपसे ये सवाल है। मतलब उन लोगों को हम किस तरीके से शऊर दे सकते हैं जो हमारे बच्चों को आगे चल के शऊर दें, उन टीचर्स को, उन असातिज़ा को, उन पेरेंट्स को जिनको इतनी ज़्यादा आगाही अभी तक भी नहीं है आज के दौर में, तो ये हमें बताइएगा प्लीज़।
0: जी मैम, ये रियली एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखें, जैसे इस वक्त HFT काम कर रही है और HFT ये नहीं है कि सिर्फ ही पौधे दे रही है या फिर इस तरह से काम कर रही है, वो सेशंस भी करवाएं। मतलब HFT जैसे सेशंस करवा रही है, तो जो भी ग्रीनरी के ऊपर काम कर रहे हैं या दरख्तों के ऊपर काम कर रहे हैं तो सबसे अहम बात ये कि वो सेशंस रखें, उन पेरेंट्स को उन असातिज़ा के साथ ऐसे सेशंस रखें, पहले उन्हें आगाही दें कि भाई इस चीज की अहमियत क्या है हमारे माशरे के अंदर। और जैसे उनको अवेयरनेस आएगी तो फिर वही मैसेज हम कन्वे करते हैं उन असातिज़ा और पेरेंट्स के थ्रू उन बच्चों तक। फिर इस तरह से उन बच्चों को भी आगाह किया जाए, भाई ये मैसेज हमारा आप कम से कम 10 बच्चों तक अगर पहुंचाते तो इस तरह से मेरे ख्याल में ये मैसेज हमारा काफी हद तक कन्वे भी हो सकता है।
1: बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा असद बलोच, टाइम भी बहुत लिमिटेड है, तो आप हमें ये बताइए कि लास्ट में वो बच्चे जिनको हम प्लांटिंग के लिए एजुकेट करना चाहते हैं, वो वालिदैन जो अपने बच्चों को प्लांटिंग के लिए एजुकेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे?
0: जी मैम बिल्कुल, लास्ट में ये पैगाम हम जरूर उनको देना चाहते हैं जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं। तो भाई देखिए, एक
2: अक्सर मान जो सवाल हों असा सही पोलियो की वैक्सीन दह साल तीन छोती डी वे तो असट जो बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हूँ हाई रिस्क हूँ उनके अलावा असि एरिया हाई रिस्क है ओवरऑल पूरा सूबो पूरा पाकिस्तान तेरे तक वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें भी उम्र के पोलियो लगी सके तो कें उम्र के वैक्सीन कर सके पर रेशो दह साल का घट है तेरे असो रिक्वेस्ट है सभी के बूस्टर डोज लगे।
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सुनते हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

लोग वंस अगेन आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आशी रुखसार, आपको मेरा साथ पूरे पूरे एक बजे तक का। और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी कॉल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू और कमेंट्स के थ्रू, तो जरूर ज्वाइन करें। एंड साथ साथ हमारा सेगमेंट हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज बोलो तो माने। तो आज का जो टंग ट्विस्टर है वो कुछ इस तरीके से है कि लंबी लकड़ी से लटके लाल नींबू लटके लंबी लकड़ी से, ठीक है, ये कहना है। और ये कहेंगे और कॉल्स आप लोगों के लिए 0300011348, इसके साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के मैसेजेस

0: मौजूद है। हेलो हेलो, कौन बात कर रहे हैं? सॉरी, नाम बताइएगा। रजा, कैसे? ठीक ठाक। पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
1: कल भी।
0: अच्छा, मुझे बताएंगे टंग ट्विस्टर सुनाए, बोलेंगे? बोलेंगे नहीं, पाकिस्तान नहीं। आपने तो नहीं बना लिया, ऐसे थोड़ी है। आपने कहना है कि लंबी लकड़ी से लटके लाल नींबू, लाल आवाज लटके लंबी लकड़ी से
1: लटके लाल
0: नींबू। छोड़े छोड़े, आप सुनाओ। थैंक यू सो मच। और कुछ कहेंगे? ओके, मैं सॉन्ग सुनाती हूँ। थैंक यू।

सॉरी लंबी लकड़ी से लटके लाल नींबू, लाल नींबू लटके लंबी लकड़ी से, ठीक है ये कहेंगे. जो ज्यादा सही सही बोलेगा वो जीनियस बन जाएगा, ठीक है. तो

0: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: ॾाढो सुठो
1: जीए FM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

ज यू वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आकर मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का, एक बजने में बहुत कम वक्त बाकी रह चुका है और

बाकी जी साथ साथ हम मैसेजेस को इंक्लूड करते हैं. बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस मुझे रिसीव होते जा रहे हैं 8881 पे. हमें मैसेज रिसीव हुआ है महबूब का. महबूब मोरो सिटी से हमें सुन रहे हैं. कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हो आप? आपका प्रोग्राम VIP है. अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे. आमीन. कूंज फाइजा का सॉन्ग सुना दे. सफदर बलोच के बहुत सारे मैसेजेस आए हैं. बहुत सारी पोइट्रीज लिख भेजी हैं सफदर ने. सफदर बलोच ने. इरफान लांघा ने हमें कमेंट किया है जी, और कहते हैं कि योर प्रोग्राम इज वेरी गुड.

सुहाना खान भक्कर से हमें सुन रही हैं, नजीर खोसो ने हमें ज्वाइन किया है जी, और इसी के साथ हम लेंगे लास्ट अनलकी कॉलर भी 03000113488 के ऊपर.

Let's do this. Sing with me, everybody, if you know the song.

0: पंजाब जो डाढ तकरारी सीजी ए टीपी लिंक केनाल खोले छड़िया बिनी तकरारी केनाल जरिए 18,000 क्यूसिक पानी खर्च शुरू करे छड़ी पानी खोट के मुंह डींदड़ सिंध में सूरतयाल संगीन थियण जो खदशो जरिए मौजूद पंजाब पारा मुबैना तौर जबरदस्ती खोले सीजी लिंक केनाल में 13,000 क्यूसिक पानी छड़ो वो है जडें टीपी लिंक केनाल में भी 5,000 क्यूसिक पानी छोड़ वो है। सिंध में पानी खोट दौरान पंजाब पारा जबरदस्ती खोले केनाल्स से आबादगारन जहा खदशा वी वा इरसा में सिंध की नुमाइंदगी की खामोशी से भी सवाल बरकरार जरिए जो चवण है इरसा में सिंध जो नुमाइंदो वे अरसे का ऑफिसी न अची रो है। वफाकी राजधानी इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में बाहि लगन वाले वाक़े जो जिम्मेवार केर वफाकी हुकूमत बे ढी में 14 मासूम बारन के सड़ी फोत थियण वाले वाक़े की जांच मुकम्मिल कर न सकी। कार्रवाई भी रुगो वफाकी सेक्रेटरी तई महदूद पिम्स जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत बया अमरदार बदस्तूर उहदन ते मौजूद सड़ी फोत थियल मासूम बारन जा वारिस इंसाफ लाइ मुंतज़िर बाहि जे जिम्मेवारन खिलाफ़ सख्त कार्रवाई जो मुतालबो। कौमी असेंबली के सेहत बाबत कमेटी पिम्स में एसी मां बाहि लगन वे बयान के शकी करार दई छो। पिम्स अमले के बयान में भी तजाद की दावा स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स पिम्स अस्पताल जो दौरों के बाहि वाक़े जहा तफसील मालूम कया। कमेटी चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार मलानी है तो अमले के बयान में तजाद है। आलिया कामरान अमले के बयान में लगी रो है खेन बयान जो रटो हणायो वो है। डॉक्टर शाजिया सोविया मूजिब अमले जहा बयान मुतजाद आन लगे तो ड्यूटी से मौजूद न हुआ। खिते में अमुन के क्याम लाए पाकिस्तान जो कोशिशों जारी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान जो दौरों करे खिते की सूरतयाल ते ईरानी क्यादत से गालू कई आबना हरमुज से भी गालू थी पर तर्जमान ताहिर हुसैन अमदरावी है तो खिते में जारी चिकतान से फील्ड मार्शल ईरानी क्यादत से तफसीली गाल बोल कई है। पाकिस्तान खिते में चिकतान के खात्मे लाए वेचो उभर के मुल्क से भी राबते में है। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका में चिकतान के खात्मे लाए मुस्बत किरदार अदा कर रो है। खतरी वजीर आजम ईरान के अहम दौरे से अज तेहरान पहुंचो। शेख मोहम्मद बिन सानी ईरानी सियासी ए अस्करी क्यादत से मुलाकातों कद अमेरिका ईरान विच में जारी चिकतान के खात्मे समेत खिते की सूरतयाल से गालू क्यों वेंदू। आबना हरमुज के बहाली वो मामलो भी गौर हेठ इंद सिक्योरिटी फोर्सिस जो केपी के बलूचिस्तान में दहशतगर्दन खिलाफ़ कार्रवाई 11 दहशतगर्द मार सिक्योरिटी जरिए मूजिब केपी के इलाके बनून ए लाडा में 7 दहशतगर्दन के जहनम भेड़ो किया वो। बलूचिस्तान के इलाके गुजदार में ऑपरेशन दौरान 4 दहशतगर्द मार दहशतगर्दन जो इक्ताक भी तबाह बारूदी मवाद हथ वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा कामयाब ऑपरेशन से फोर्सिस के डेटा पेश। शहबाज शरीफ चाहे तो दहशतगर्दन खिलाफ़ जंग में कौम फोर्सिस से गड बीठल है। नवाज लीग पारा इफ्तार गिलानी के आजाद कश्मीर जो वजीर आजम बनाने जो फैसलो वजीर आजम हाउस की मुशावरत बाद इफ्तार गिलानी के वजीर आजम बनाने जो फैसलो किया वो। बैरिस्टर इफ्तार गिलानी टेक्नोक्रेट सीट से चूंड किया वो। नए वजीर आजम की चूंड सुभाणे थींदी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में मुकर्रर सऊदी सफीर की अलविदाई मुलाकात। वजीर आजम सऊदी सफीर की जिम्मेवारी बेहतरीन अंदाज में निभाने से मुबारक दी। शहबाज शरीफ चयो तो खिते में अमुन इस्तकाम के क्याम ला सऊदी किरदार सारा जगो है। पाकिस्तान और सऊदी अरब जहा लागापा भी मजबूत थिया। बारे में जरिए पानी की खोट खिलाफ जे यू आई के सद से एहतजाज फादर राउत चौक से कुरान पानी कर एहतजाज की धरणो हयो वो। वारे तालके में पानी खोट खत्म करण जो मुतालबो अगवान चो है तो वारे तालके के शाखन में जरिए पानी न पहुतो तो असा वारे के हर शाख से कुरान शरीफ जहा खत्मा पढ़ी हुकुमरान खिलाफ एहतजाज कंदा रहंदासी। जरवार वेझो उर्ड़ी वगे नींगर फोत केतराई बार उर्ड़ी में मुबतला गोठ अकबर गबोल में उर्ड़ी की बीमारी पखिड़ी वही उर्ड़ी में मुबतला बिन साल शाह वलिद मुनवर गबोल फोती वो केतराई बार बीमारी में वरतल सेहत खाते नोटिस न वरतो गोठाना परेशानी जो शिकार नसीराबाद में फूड खाते के नाजायजन ढाढ़ाइन खिलाफ सिंध बलोचिस्तान राइस मिल्स एसोसिएशन पारा सिंध हुकूमत राइस मिल्स एसोसिएशन जो इंडस हाईवे ते धरणो राइस मिल्स काजी पेट्रोल पंप वट टायरन के बाहियों डेई रोड ब्लॉक करे धरणो आयो अगवाणन चयो आहे त ज्यादतियूं बंद न थियूं त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो पीर जो गोठ में वधंदड़ बदमनी खिलाफ शहरन की रैली ए धरणो शहरन पीर गोठ में वधंदड़ बदमनी खिलाफ शहरन रैली कढ़ी राशदी गेट वट धरणो आयो एहतजाज कंदड़न जो चवण आए तो पीर गोठ शहर में बदमनी चोर चढ़ी वही है ढीं डिठे शहरन का फुरू थी रही है दुआरन खिलाफ कार्रवाई कर अमन बहाल करायो वे उबावड़ो वेझो घर की भित किरण सबब निंगरी फोत बी जख्मी गोठ मुको डहर में घर की कच्ची भित किरण सबब जैनब दायो फोती वही रशीदा दायो जख्मी थी पे घर धनी नुमान दायो जो चवण है त घर की कच्ची भित भरसा निंगरियूं रांद खेडी रही हुई तो भित किरी पई पिथोरो शहर में पानी पहुंचाने लाइ मिठड़ाओ किनार में लगंदड़ पाइप लाइन खिलाफ हजारें पोछड़ी के आबादगारन जो धरणो टेल आबादगार एसोसिएशन के सद से आबादगारन रहवासियन एहतजाजी मुजाहरो करे धरणो आयो आबादगारन जो चवण है मिठड़ाओ किनार में लगंदड़ पाइप लाइन इलाके वासियन लाइ कातिल है पोछड़ी की जमीन बंजर बणजी वेंदी नौशेरो फेरोज में मुख्तलिफ़ गोठन के रहवासियों जो बुनियादी सहूलतन की खोट खिलाफ एहतजाज गोठ छलीवारा चांडिया लिंक रोड से मरम्मत न थियण खिलाफ़ पंजवीह गोठन के रहवासियों ने एहतजाज मुजाहरो कयो आहे मुजाहिरन मूजिब गोठ बुनियादी सहूलतन खां महरूम आहे चूंडियल नुमाइंदा गुम आहिनि मसला हल कया वञनि ऐं नेपाल में बोड ऐं लैंडस्लाइडिंग तबाही मचाए छॾी फोतियुनि जो अंगु वधीक 162 थी वियो 260 परॾेहनि समेत 558 शहरी बदस्तूर गुम ॻोल्हा जारी नेपाल ऐं तिब्बत जे सरहदी इलाइक़े में बोड ऐं लैंडस्लाइडिंग सबबि 162 ॼणा अजल जो शिकार थिया नेपाली फ़ौज गुम थियल माण्हुनि जी ॻोल्हा लाइ 2000 खां वधीक अहलकार मुक़ररु करे छॾिया
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो मुझो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए तो आसान जवाब यो आ ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक वड़ी नियामत आयन बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है जरूरी आए असा जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आयन उनन के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए
3: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है
4: सुनते रहो जी एफ एम 90.8

एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।

शहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असा बार बार पंजे बारन के पोलियो का कतरा छो प्यारियों जो त असा जे बार पे ही पोलियो का कतरा पी चुको है। मुंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो का कतरा पीण सा बार जी इम्यूनिटी जका वो बेहतर थिए थी। हाणे जका कैंपेन अचे थी जे में असा जको पोलियो जो दींदा सी उन में का भी सुई इस्तेमाल न थी बगैर के दर्द जे वैक्सीन जका पंजे बार के करायो तो जी असो पाकिस्तान इन पोलियो जड़े मुझी मर्द में जो महफूज रहे।
3: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: मीरपुर माथेलो भरसां ॻोठाणे ज़ाल खे क़तल करण बाद पाण खे गोली हणी आपघात करे छॾियो। ॻोठ मीर खान वसीम अब्दुल जब्बार पंहिंजी घरवारीअ खे गोली हणी क़तल कयो। ज़ाल खे क़तल करण बाद जवाबदार अब्दुल जब्बार पाण खे बि गोली हणी आपघात कयो। बारे में ज़रई पाणीअ जी खोड़ ख़िलाफ़ जे यू आई जे सर ते एहतजाज। फाज़िल राउ चौक ते क़ुरान ख़्वानी करे एहतजाज जी धरणो हयो वियो। वारे तालके मां पाणी खोड़ ख़तमु करण जो मुतालबो अॻवाणनि चयो आहे त वारे तालके जे शाखनि में ज़रई पाणी न पहुतो त असां वारे जी हर शाख ते क़ुरान शरीफ़ जा ख़तमा पढ़ी हुकुमराननि जे ख़िलाफ़ एहतजाज कंदा रहंदासीं। जरवार वेझो उड़ी वॻे निंगरी फोत केतिरा ई ॿार उड़ी में मुबतला। ॻोठ अकबर गबोल में उड़ीअ जी बीमारी पखिड़िजी वई। उड़ीअ में मुबतला 2 सालनि जो शाज़े वलिद मुनवर गबोल फोत थी वियो। केतिरा ई ॿार बीमारी में वरितल। सिहत खाते नोटिस न वरितो। ॻोठाणा परेशानियुनि जो शिकार। नसीराबाद में फुट खाते जे नाजाइज़नि ऐं ॾाढाइनि ख़िलाफ़ सिंध बलोचिस्तान राइस मिल्स एसोसिएशन पारां सिंध बलोचिस्तान राइस मिल्स एसोसिएशन जो इंडस हाईवे ते धरणो। राइस मिल्स काज़ी पेट्रोल पंप वटि टायरनि खे बाहियूं ॾेई रोड ब्लॉक करे धरणो हयो वियो। अॻवाणनि चयो आहे त ज़्यादतूं बंदि न थियूं त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। पीर जो ॻोठ में वधंदड़ बदमिनियुनि ख़िलाफ़ शहरनि जी रैली ऐं धरणो। शहरनि पीर ॻोठ में वधंदड़ बदमिनियुनि ख़िलाफ़ शहरनि रैली कढी राशदी गेट वटि धरणो हयो। एहतजाज कंदड़नि जो चवणु आहे त पीर ॻोठ शहर में बदमिनी चोट चढ़ी वई आहे। ॾींहुं ॾिठे शहरनि खां फुरू थी रहियूं आहिनि। ॾोहारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे अमन बहाल करायो वञे। उॿावड़ो वेझो घर जी भित किरण सबबि निंगरी फोत। ॿी ज़ख़्मी ॻोठ मुको ॾहर में घर जी कची भित किरण सबबि ज़ैनब दायो फोत थी वई। रशीदा दायो ज़ख़्मी थी पई। घर धणी नोमान दायो जो चवणु आहे त घर जी कची भित भरिसां निंगरियूं रांदि खेॾी रहियूं हुयूं त भित किरी पई। पिथोरो शहर में पाणी पहुचाइण लाइ मिठड़ाओ किनार में लॻंदड़ पाइप लाइन ख़िलाफ़ हज़ारे पोछड़ी जे आबादगारनि जो धरणो। टेल आबादगारनि एसोसिएशन जे सॾु ते आबादगारनि ऐं रहवासियुनि एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। आबादगारनि जो चवणु आहे त मिठड़ाओ किनार में लॻंदड़ पाइप लाइन इलाइक़े वासियुनि लाइ क़ातिल आहे। पोछड़ी जी ज़मीन बंजर बणिजी वेंदी। नौशहरो फेरोज़ में मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे रहवासियुनि जो बुनियादी सहूलियतुनि जी खोड़ ख़िलाफ़ एहतजाज। ॻोठ ज़िले वारा चांडियार लिंक रोड जी मरमत न थियण ख़िलाफ़ 25 ॻोठनि जे रहवासियुनि एहतजाज कयो। मुज़ाहिरीन मूजिबि ॻोठ बुनियादी सहूलियतुनि खां महरूम आहे। चूंडियल नुमाइंदा गुम आहिनि। मसला हल कया वञनि। कुंडरीअ में कोली बिरादरी जो बासर ऐं पुलिस जे नाजाइज़नि ख़िलाफ़ एहतजाज जी रैली। ॻोठ हाजी मोहम्मद रफ़ी काराई जे रहवासियुनि प्रेस क्लब अॻियां एहतजाज जी मुज़ाहिरो कयो। सदन चवणो त बासर ज़मीनदार चौधरी हुमायूं सत्तार ॿारनि खे गारगन कई, हवाई फायर कया। पुलिस पारां इंसाफ़ करण बदिरां उल्टो असां ते केस दाख़िल करे धमकायो पियो वञे। असांखे घरनि मां बेदख़ल करे असांजो माल बासर पुलिस जी मदद सां खणी वियो आहे। आला इख़्तियारी नोटिस वठी शफ़ाफ़ जांच कराए इंसाफ़ ऐं तहफ़ुज़ फराहम कनि। मिठी में यूसी चेयरमैन इस्तीफ़ा ॾेई लाइव स्टाक खाते में नायब कासिद जी नौकिरी वठी छॾी। छाछरो तालुके जे यूनियन काउंसिल ढाकलो जे चेयरमैन अली नवाज़ दोहौट इस्तीफ़ा ॾेई यूसी चेयरमैनशिप तां इस्तीफ़ा ॾींदड़ अली नवाज़ चौकीदार जी नौकिरी ज्वाइन करे वरिती। लाइव स्टाक खाते जे डिप्टी डायरेक्टर तसदीक कंदे चयो आहे त अली नवाज़ चेयरमैनशिप तां इस्तीफ़ा ॾेई नायब कासिद जी नौकिरी ज्वाइन कई आहे। ऐं नेपाल में बोर्ड ऐं लेट्स लैंडिंग तबाही मचाए छॾी। फोतियुनि जो अंगु वधीक 165 थी वियो। 260 परेन समेत 826 शहरनि बदस्तूर गुम। ॻोल्हा जारी। नेपाल ऐं तिब्बत जे सरहदी इलाइक़े में बोर्ड ऐं लेट्स लैंडिंग सबब लाइ 2000 खां वधीक अहलकार मुक़रर करे छॾिया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
2: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाराए।
3: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
4: सुनते रहो GFM 90.8।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पियारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पियारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइण लाज़मी आहे।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाकिस्तानी क्वेश्चन जो हिस्सो हो पाकिस्तान रियासती सतह किते अफगानिस्तान से गाल तैयार है अफगानिस्तान के पैं सरजमीन पाकिस्तान खिलाफ इस्तेमाल थियण के रोकण पव। कतरी वजीर आजम ईरान के अहम दौरे से अज तेहरान पहुंचन। शेख मोहम्मद बिन सानी ईरानी सियासी अस्करी क्यादत से मुलाकातू कद अमेरिका ईरान विच में जारी चिकनाण के खात्मे समेत खिते की सूरत हाल से गाल आबनार मुझे बहाली वो मामलो भी गौर हेठ

0: हमें क्या पता कि बच्चे 10 जने और 20 गायब हुए हो। किसी वर्जन पर उन्होंने
1: डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गया और उस एसएचओ नदीम ने बोला है हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते।
0: हमने जो भी है हमें दो देखी है ना बच्चों के टुकड़े देखे।
2: वफाकी राजधानी इस्लामाबाद जे पी एम जे अस्पताल में बाहि लगण वारे वाक़े जो जिम्मेवार केर? वफाकी हुकूमत ॿिए ॾींहं में 14 मासूम ॿारनि जे सड़ी फोत थियण वारे वाक़े जी जांच मुकमिल न करे सघी। कार्रवाई में रुगो वफाकी सेक्रेटरी ताईं महदूद, पिम्स जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत ॿिया अमलदार बदस्तूर उहिदनि ते मौजूद। सड़ी फोत थियल मासूम ॿारनि जा वारिस इंसाफ़ जा मुंतज़िर। साने जी अदालती जांच लाइ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल। क़ौमी असेंबली जे सिहत बाबति कमेटी पिम्स में एसी मां बाहि लॻण वारे बयाननि खे शकी करार ॾेई छॾियो। पिम्स अमले जे बयाननि में तज़ाद जी दावा। स्टैंडिंग कमेटी जे मेंबर्स पारां पिम्स जो दौरो, बाहि वाक़े जा तफ़सील मालूम कया। कमेटी चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार चयो आहे त अमले जे बयाननि में तज़ाद आहे। आलिया कामरान चयो आहे त अमले जे बयाननि मां लॻी रहियो आहे त खेन रटो हणायो वियो आहे। डॉक्टर शाज़िया चयो आहे त अमले जा बयान मुतज़ाद आहिनि, लॻे थो त ड्यूटी ते मौजूद न हुया। पंजाब जो ॾाढ तकरारी सी जी ऐं टी पी लिंक केनाल खोले छॾिया। ॿिन्ही तकरारी केनाल ज़रिए 18,000 क्यूसिक पाणी शुरू करे छॾियो। पाणी खोट खे मुंहुं ॾींदड़ सिंध में सूरत हाल संगीन थियण जो ख़दशो। ज़रियनि मूजिबि पंजाब पारां मुबैना तौर ज़बरदस्ती खोलियल सी जी लिंक केनाल में 13,000 क्यूसिक पाणी छॾियो वियो आहे, जॾहिं त टी पी लिंक केनाल में 5,000 क्यूसिक पाणी छोड़ कयो वियो आहे। सिंध में पाणी खोट दौरान पंजाब पारां ज़बरदस्ती खोलियल केनाल ते आबादगारनि जा ख़दशा वधी विया। इरसा में सिंध जे नुमाइंदे जी ख़ामोशीअ ते बि सवाल बरक़रार। ज़रियुनि जो चवणु आहे त इरसा में सिंध जो नुमाइंदो वॾे अरसे खां आफ़ीसी न अची रहियो आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जो के पी के ऐं बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं, 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियुनि मूजिबि के पी के जे इलाइक़े बनूल ऐं लाडा में दहशतगर्दनि खे ज़हन भेड़ो कयो वियो। बलोचिस्तान जे इलाइक़े हुज़दार में ऑपरेशन दौरान 4 दहशतगर्द मारिजी विया। दहशतगर्दनि जो हिकु थाक बि तबाह, बारूदी मवाद हथ। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां कामयाब ऑपरेशन से फोर्सिस खे भेटा पेश। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में क़ौम फोर्सिस सां गॾु बीठल आहे। नवाज़ लीग पारां इफ़्तिखार गिलानीअ खे आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म बणाइण जो फ़ैसिलो। वज़ीर आज़म हाउस में मुशावरत बाद इफ़्तिखार गिलानीअ खे वज़ीर आज़म बणाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो। बैरिस्टर इफ़्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट सीट ते चूंड कयो वियो। आज़ाद कश्मीर जे नए वज़ीर आज़म जी चूंड सुभाणे थींदी। नौशेरो फेरोज़ी अदालत में ज़ियाल अंजार जे घर ते हमले समेत 8 केसनि जी ॿुधणी। एन पी पी सरबराह ग़ुलाम मुर्तज़ा जतोई, मसरूर जतोई ऐं ॿिया अदालत में पेश। अदालत समूरनि केसनि जूं ॿुधणियूं 24 सेप्टेम्बर ताईं मुलतवी करे छॾियूं। मुर्तज़ा जतोई चयो आहे त केस कूड़ा आहिनि, इंसाफ़ जी उमीद आहे। मीरपुर माथेलो भरिसां ॻोठाणे ज़ाल खे क़तल करण बाद पाण खे गोली हणी आपघात करे छॾियो। ॻोठु मीर ख़ान में अब्दुल जब्बार पंहिंजी घरवारी राबिया खे गोली हणी क़तल कयो आहे। ज़ाल खे क़तल करण बाद जवाबदार अब्दुल जब्बार पाण खे बि गोली हणी आपघात कयो। वारे में ज़रई पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ जे यू आई जे सर ते एहतजाज। फाज़ल राहू चौक ते क़ुरान ख़वानी करे एहतजाजी धरणो हयो वियो। वारे तालुके मां पाणी खोट ख़तमु करण जो मुतालबो। अॻवाननि जो चवणु आहे त वारे तालुके जे शाखनि में ज़रई पाणी न पहुतो त असां वारे जी हर शाख ते क़ुरान शरीफ़ जा ख़तमा पढ़ी हुकुमराननि जे ख़िलाफ़ एहतजाज कंदा रहंदासीं। आज़ाद कश्मीर में शहीद थियल रेंजर सहलकार शाहनवाज़ अली नायक जे बबर लोहे वेझो जनाज़े नमाज़ बाद तदफ़ीन। जनाज़े नमाज़ में पाकिस्तान रेंजर जे आफ़िसरनि, जवाननि ऐं शहरनि जी वॾे अंग में शिरकत कई वई। आज़ाद कश्मीर में रोड क्लीयरेंस ऑपरेशन दौरान बबर लोहे वासी रेंजर सहलकार शाहनवाज़ अली नायक खे हथियारबंदनि शहीद कयो हो। नसीराबाद में फूड खाते जे नाजाइज़िन ऐं ॾाढनि ख़िलाफ़ सिंध बलोचिस्तान राइज़ मिल्स एसोसिएशन पारां सिंध बलोचिस्तान राइज़ मिल्स एसोसिएशन जो इंडस हाईवे ते धरणो। राइज़ मिल्स काज़ी पेट्रोल पंप वटि टायरनि खे बाहियूं ॾेई रोड ब्लॉक करे धरणो हयो वियो। अॻवाननि चयो आहे त ज़्यादतियूं बंदि न थियूं त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। मीरपुर माथेलो वेझो हथियारबंदनि हथां फुर मज़ाहिमत ते पीरसन क़तल। ॻोठ गुल मोहम्मद गबोल वासी पीरसन मीर मोहम्मद गबोल खे हथियारबंदनि जर्गमाल बणाए फुर लुट कई। मज़ाहिमत करण ते हथियारबंदनि पीरसन खे क़तल करे फरार थी विया। मक़तूल जे भाउ जब्बार पिताफ़ी चयो आहे त भाउ खे फुर मज़ाहिमत ते क़तल कयो आहे। खबर में सरकारी दवाओं सरकारी अस्पतालन के ई विकरो करण जो इंकशाफ केटीएन न्यूज रिकॉर्ड हथ करे वरतो खबर है उडेरो लाल जो अस्पतालों पीपीएचआई में जिम थे बाद बचल दवाओं विक्रो कई वन थियं मेन स्टोर में दवाओं जारी करण बाबत रिपोर्ट केटीएन न्यूज हासिल करे वरती सरकारी स्टॉक में दवाओं बीहर खरीद करण सबब कौमी खजाने के लखे रुपये जो नुकसान जरियन जो चवण है तो बचल दवाओं डीएचक्यू मटियारी ए टीएचक्यू हाला के विक्रो कर दिनों व्यू हैं। पिथौरो शहर में पानी पहुंचाने लाइ मिटलाव केनाल में लगंदड़ पाइपलाइन खिलाफ हजारे पुछड़े आबादगारन जो धरणो टेल आबादगार एसोसिएशन के सर ते आबादगारन रहवासी एहतजाजी मुजाहरो करे धरणो हयो। आबादगारन जो चवण है तो मिटलाव केनाल में लगंदड़ पाइपलाइन इलाकेवासिन लाइ कातिल है पुछड़ी के जमीन बंजर बणजी वेंदी। नौशेरो फेरोज में मुख्तलिफ गोठन के रहवासियों जो बुनियादी सहूलतन की खोट खिलाफ एहतजाज गोठ सिले वारा चांडिया लिंक रोड के मरम्मत न थन खिलाफ पंजवी गोठन के रहवासियों एहतजाज कयो। मुजाहिरन मूजिब गोठ बुनियादी सहूलतन का महरूम आन चूंडियल नुमाइंदा गुम आन मसला हल कया वन। कुंडरी में कोली बिरादरी जो बासर ए पुलिस के नाजायजन खिलाफ एहतजाजी रैली गोठ हाजी मोहम्मद रफीक आराई के रहवासियों प्रेस क्लब अगैं एहतजाजी मुजाहरो कयो। संदन चवण हो तो बासर जमींदार चौधरी हुमायूं सत्तार बारन के गार गन कई हवाई फायर कया पुलिस पारा इंसाफ करण बदरा उल्टो असां ते केस दाखिल करे धमकायो पियो वने असां के घरन मां बेदखल करे असां जो माल बासर पुलिस की मदद से खड़ी वो है। आला इख्तियारी नोटिस वी शफाफ जांच कराए इंसाफ ए तहफुज फराम कर। लाड़काने में ग्रीन हिल हेल्थ अलाउंस के सद से मुतालबन की मंताला एहतजाजी रैली अगवाण सेहत के इदारन के पीपीएचआई हवाले कर बदरा उन सहूलतूं फराम कई वन सेहत में जो शोबो अगे ही केतर ही मसलन ने मुश्किलात के मुंह दई रो है मसलन के नजरअंदाज कर बदरा हुकूमत हल ला संजीदा कदम खणे। मिठी में यूसी चेयरमैन इस्तीफा दई लाइव स्टॉक खाते में नायब कासिद की नौकरी वेटी छी छाछरो तालके के यूनियन काउंसिल डाको के चेयरमैन अली नवाज लोहट इस्तीफा दई छी यूसी चेयरमैनशिप ता इस्तीफा दींदड़ अली नवाज चौकीदार की नौकरी ज्वाइन कर वरती। लाइव स्टॉक खाते के डिप्टी डायरेक्टर तस्दीक कंदे अली नवाज इस्तीफा दई नायब कासिद की नौकरी ज्वाइन कई है। नेपाल में बोड ए लेड स्लाइडिंग तबाही मचाए छी फोतिन जो अंग 165 थी वो 260 परडेन समेत 826 शहरी बदस्तूर गुम गोल्हा जारी है। नेपाल ए तिब्बत के सरहदी इलाके में बोड ए लेड स्लाइडिंग सबब 165 जणा अजल जो शिकार थिया। नेपाली फौज गुम थियल मानू की गोल्हा लाए 2000 का वधिक अहलकार मुकर्र कर छिया।
3: बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज मुअस्सर बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
6: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
7: GAFM 88
6: नेटवर्क
8: सिंध की आवाज।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1116 पे।
1: सुबह

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि उनमें इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हमें क्या पता कि बच्चे 10 जने 20 गायब हुए हैं। किसी वजन पर उन्होंने
1: डॉक्टर
0: ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गए और उस SHO नदीम ने बोला है हमें से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते। हमने जो भी है हमें दो
1: देखी है ना बच्चों के टुकड़े देखे।
2: वफाकी राजधानी इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में बाहे लगन वाले वाके जो जिम्मेवार केयर वफाकी हुकूमत बे डी भी 14 मासूम बारन जे सड़ी फोथण वाले वाके जी जांच मुकम्मल न करे सकी। कार्रवाई भी रुगो वफाकी सेक्रेटरी ताई महदूद पिम्स जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत बया अमलदार बदस्तूर उहदन ते मौजूद सड़ी फोथल मासूम बारन जा वारिस इंसाफ जा मुंतजिर। साने जी अदालती जांच लाइ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल दरख्वास्त। कौमी असेंबली के सेहत बाबत कमेटी पिम्स में एसी में बाहे लगन वाले बयान के शकी करार दई छो। पिम्स अमले के बयान में भी तसाद जी दावा। स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स पारा पिम्स जो दौरों बाहे वाके जा तफसील मालूम कया। कमेटी चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार है तो अमले के बयान में तजाद है। आलिया कामरान है तो अमले के बयान में लगी रो है खेन रटो हणा वो है। डॉक्टर शाजिया है तो अमले जहा बयान मुतजाद लगे तो ड्यूटी से मौजूद न हुआ।

इंतही दिल लुखाईंदड़ आहे। मुल्क में अस्पतालन जो हालतूं बेहतर करण जी जरूरत आहे। असां जी जिम्मेवार सिंध जी हद ताईं आहे। वरे वजीर मुराद अली शाह चयो आहे त एनिमल हेल्थ कोरंगी जे दौरे दौरान मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध असेंबली में 6 भेरा सूबे जे विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ पास कयो आहे, जंहिंखे शौक़ु आहे ॿीहर ठहराउ आणे। सिंध जा माण्हू छा था चाहिनि? सिंध जो आवाम जेको चाहींदो उहो ई थींदो। मुंहिंजी या अवां जी ख़्वाहिशनि सां कुझु बि न थींदो। मकानी निज़ाम ऐं इदारनि खे बाख़्तियार बणाइण पीपल्स पार्टी जो मंशूर आहे। सिंध वाहिद सूबो आहे जिते मकानी हुकूमतूं मौजूदु आहिनि। सिक्योरिटी फोर्सिस जो केपीके ऐं बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियुनि मूजिबि केपीके जे इलाइक़े बनून ऐं लाडा में 7 दहशतगर्दनि खे जहनुम भेड़ो कयो वियो। बलोचिस्तान जे इलाइक़े खुज़दार में ऑपरेशन दौरान 4 दहशतगर्द मारिजी विया। दहशतगर्दनि जो हिकु थाक बि तबाह। बारूदी मवाद हथ वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां कामयाब ऑपरेशन ते फोर्सिस खे भेटा पेश। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में क़ौम फोर्सिस सां गॾु बीठल आहे। नवाज़ लीग पारां इफ्तिखार गिलानी खे आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म बणाइण जो फ़ैसिलो। वज़ीर आज़म हाउस में मुशावरत बाद इफ्तिखार गिलानी खे वज़ीर आज़म बणाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट सीट ते चूंडियो वियो आहे। आज़ाद कश्मीर जे नए वज़ीर आज़म जी चूंड सुभाणे थींदी।

0: मीरपुर माथेलो भरसां ॻोठण ज़ाल खे क़तल करण बाद पाण खे गोली हणी आपघात करे छॾियो। ॻोठ मीर ख़ान अब्दुल जबार पंहिंजी घरवारी राबिया खे गोली हणी क़तल कयो। क़तल बाद फरार थी वियो। पाण खे गोली हणी आपघात करे छॾियो। वारे में ज़री पाणी जे खोट ख़िलाफ़ जे यू आई जे सट एहतजाज फाज़िल राउ चौक ते क़ुरान ख़ानी करे एहतजाजी धरणो हयो वियो। वारे तालके मां पाणी खोट ख़तम करण जो मुतालबो। अॻवाणनि चयो आहे त वारे तालके जी शाखनि में ज़री पाणी न पहुतो त असां वारे जी हर शाख ते क़ुरान शरीफ़ जा ख़तमा पढ़ी हुकुमरान जे ख़िलाफ़ एहतजाज कंदा रहंदासीं। आज़ाद कश्मीर में शहीद थियल रेंजर सहलकार शाहनवाज अली नाइक जे बबर लोहे वेझो जनाज़े नमाज़ बाद तकफ़ीन। जनाज़े नमाज़ में पाकिस्तान रेंजर्स जे आफ़िसरनि जवाननि ऐं शहरनि जी वॾे अंग में शिरकत। आज़ाद कश्मीर में रोड क्लीयरेंस ऑपरेशन दौरान बबर लोहे वासी रेंजर सहलकार शाहनवाज़ अली नाइक खे हथियारबंदनि शहीद कयो। नसीराबाद में फूड खाते जे नाजाइज़ ॾाढाइन ख़िलाफ़ सिंध बलोचिस्तान राइस मिल्स एसोसिएशन पारां सिंध बलोचिस्तान राइस मिल्स एसोसिएशन जो इंडस हाईवे ते धरणो। राइस मिल्स काज़ी पेट्रोल पंप वटि टायरनि खे बाहियूं ॾेई रोड ब्लॉक करे धरणो हयो वियो। अॻवाणनि चयो त ज़्यादतियूं बंदि न थियूं त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। मीरपुर माथेलो वेझो हथियारबंदनि हथां फुर मज़ाहमत ते पीरसन क़तल। ॻोठ गुल मोहम्मद गबोल वासी पीरसन मीर मोहम्मद गबोल खे हथियारबंदनि जरगबाल बणाए फुर लुट कई। मज़ाहमत करण ते हथियारबंदनि पीरसन खे क़तल करे फरार थी विया। मक़तूल जो भाउ जब्बार पिताफ़ी चयो आहे त भाउ खे फुर मज़ाहमत ते क़तल कयो आहे। खैबर में सरकारी दवाऊं सरकारी अस्पतालनि खे विकिरो करण जो इंकशाफ़। केटीएन न्यूज़ रिकॉर्ड हथ करे वरितो। खैबर ऐं उडेरोलाल जूं अस्पतालूं पीपीएचआई में ज़िमकरण थियण बाद बचियल दवाऊं विकिरो कयूं वयूं। मेन स्टोर मां दवाऊं जारी करण बाबति रिपोर्ट केटीएन न्यूज़ हासिल करे वरिती। सरकारी स्टॉक मां दवाऊं ॿीहर ख़रीद करण सबबि क़ौमी ख़ज़ाने खे लखे रुपियनि जो नुक़सान। सरियन जो चवणु आहे त बचियल दवाऊं डीएचक्यू मटियारी ऐं टीएचक्यू हाला खे विकिरो करे ॾिनियूं वयूं आहिनि। पिथोरो शहर में पाणी पहुचाइण लाइ मिठड़ाओ केनाल में लॻंदड़ पाइप लाइन ख़िलाफ़ हज़ारे पोछड़ी जे आबादगारनि जो धरणो। तेल आबादगारनि एसोसिएशन जे सॾ ते आबादगारनि ऐं रहवासियुनि एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। आबादगारनि जो चवणु आहे त मिठड़ाओ केनाल में लॻंदड़ पाइप लाइन इलाइक़े वासियुनि लाइ क़ातिल आहे। नौशेरो फिरोज़ में मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे रहवासियुनि जो बुनियादी सहूलियतनि जे खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। ॻोठ चिले वारा चांडिया लिंक रोड जे मरमत न थियण ख़िलाफ़ 25 ॻोठनि जे रहवासियुनि एहतजाज कयो। गुज़ारियुनि मूजिबि ॻोठ बुनियादी सहूलियतनि खां महरूम आहे। चूंडियल नुमाइंदा गुम आहिनि। मसला हल कया वञनि। कुंडरीअ में कोली बिरादरी जो बासर ऐं पुलिस जे नाजाइज़नि ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली। ॻोठ हाजी मोहम्मद रफ़ी काराणी जे रहवासियुनि प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। संदनि चवणो त बासर ज़मीनदार चौधरी हुमायूं सत्तार ॿारनि खे गार गन कई, हवाई फायर कया, पुलिस पारां इंसाफ़ करणु बदिरां उल्टो असां ते केस दाख़िल करे धमकायो पियो वञे। असांखे घरनि मां बेदख़ल करे असांजो माल बासर पुलिस जी मदद सां खणी वियो आहे। आला इख़्तियारियूं नोटिस वठी शफ़ाफ़ जाच कराए इंसाफ़ ऐं तहफ़ुज़ फ़राहम कनि। लाड़काणे में ग्रेंट हेल्थ अलायंस जे सॾ ते मुतालबनि जी मंटल एहतजाजी रैली। अॻवाणनि चयो आहे त सिहत जे इदारनि खे पीपीएचआई हवाले करण बदिरां उन्हनि में सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि। सिहत जो शोबो अॻी केतिरनि ई मसइलनि ऐं मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। मसइलनि खे नज़रअंदाज़ करण बदिरां हुकूमत हल लाइ संजीदा क़दम खणे। मिठीअ में यूसी चेयरमैन इस्तीफ़ा ॾेई लाइव स्टॉक खाते में नायब कासिद जी नौकिरी वठी छॾी। अस्पताल जे डिप्टी डायरेक्टर तस्दीक कंदे चयो आहे त अली नवाज़ चेयरमैनशिप सां इस्तीफ़ा ॾेई नायब कासिद जी नौकिरी ज्वाइन कई आहे। ऐं नेपाल में बोर्ड ऐं लैंड स्लाइडिंग तबाही मचाए छॾी। फोतियुनि जो अंगु वधी 299 थी वियो। 260 परॾेहनि समेत 826 शहरी बदस्तूर गुम। ॻोल्हा जारी। नेपाल ऐं तिब्बत में सरहदी इलाइक़े में बोर्ड ऐं लैंड स्लाइडिंग सबबि 299 ॼणा अजल जो शिकार थिया। नेपाल ऐं चीन जो गुम थियल माण्हुनि जी ॻोल्हा लाइ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी आहे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहो बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
4: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन दूरी का सबब

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क।
1: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पाकिस्तान्स कंटिन्यूइंग डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू फैसिलिटेट एन एंड टू द यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट एंड रिन्यूड एफर्ट्स for reopening the Strait of Hormuz. And claims by certain quarters that the Chief of Army Staff and the Chief of Defense Forces visited Iran as envoy of President Trump or the US are misleading and factually incorrect, as his visit was undertaken purely in the context and backdrop of Pakistan's ongoing role as a mediator.
3: फील्ड मार्शल जो ईरानी दौरो अमुन लाइ जारी साल से वारे क्वेश्चन जो हिस्सो हो दौरे के अमेरिका से गलण वारियों खबरों बेबुनियाद आहिन। पाकिस्तान ईरान जो व्यापार जारी है एक तरफिन पाबंदी के अमल जा पाबंद नाही पर तर्जुमान ताहिर हुसैन इंद्रावी फील्ड मार्शल सैयद आसिम गनी के सदर ट्रंप के नुमाइंदे तौर तेहरान जो दौरो करण वारे खबरों के रद्द कंदे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ए घरू वजीर मोहसिन नकवी जो ईरानी दौरो चिट्टान में घटताई वारे पाकिस्तानी क्वेश्चन जो हिस्सो हो। पाकिस्तान रियासती सतह से अफगानिस्तान से गालन करने लाए तैयार है। अफगानिस्तान के पैं सरजमीन पाकिस्तान खिलाफ इस्तेमाल थियण के रोकण पव। कतरी वजीर आजम ईरान के अहम दौरे से अज तेहरान पहुंचन शेख मोहम्मद बिन सानी ईरानी सियासी अस्करी क्यादत से मुलाकातू कह अमेरिका ईरान विच में जारी छिकताण के खात्मे समेत खिते की सूरत हाल से गालू क्यों वेंदू। आबनार मुजिब अलीवारो मामलो भी गौर हेठ इंदू।

0: जगह जले अभी गायब हुए इसी वजन में उन्होंने बच्चे
1: डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गया और उस SHO नदीम ने बोला हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते। हमने जो भी है हमें दो
0: देखी है ना बच्चों के टुकड़े देखे।
2: वफाकी राजधानी इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में बाहि लगण वारे वाक़े जो जिम्मेवार केर वफाकी हुकूमत बे डीं भी 14 मासूम बारन जे सड़ी फो थियण वारे वाक़े जी जांच मुकम्मल न करे सघी। कार्रवाई भी रुगो वफाकी सेक्रेटरी ताईं महदूद पिम्स जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत बया अमलदार बदस्तूर उहिदनि ते मौजूद सड़ी फो थियल मासूम बारन जा वारिस इंसाफ जा मुंतज़िर। साने जी अदालती जांच लाइ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दाख़िल दरख़्वास्त। कौमी असेंबली जे सेहत बाबत कमेटी पिम्स में एसी मां बाहि लगण वारे बयानन के शकी करार ॾेई छॾियो। पिम्स अमले जे बयानन में बे तसाद जी दावा। स्टैंडिंग कमेटी जे मेंबर्स पारां पिम्स जो दौरो बाहि वाक़े जा तफ़सील मालूम कया। कमेटी चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार चयो आहे त अमले जे बयानन में तज़ाद आहे। आलिया कामरान चयो आहे त अमले जे बयाननि मां लॻी रहियो आहे त खेन रटो हणायो वियो आहे। डॉक्टर शाज़िया चयो आहे त अमले जा बयान मुज़ाद आहिनि, लॻे थो त ड्यूटी ते मौजूदु न हुया।

पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में पेश आयल वाक़ियो इंतिहाई दिल लुखाईंदड़ आहे। मुल्क में अस्पतालनि जूं हालतूं बहितर करण जी ज़रूरत आहे। असांजी ज़िमेवार सिंध जी हद ताईं आहे। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त एनिमल हेल्थ कोरंगी जे दौरे दौरान मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल। मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध असेंबली में 6 भेरा सूबे जे विरहाङे ख़िलाफ़ ठहिराउ पास कयो आहे, जंहिंखे शौक़ु आहे ॿीहर ठहिराउ आणे। सिंध जा माण्हू छा था चाहिनि? सिंध जो आवाम जेको चाहींदो उहो ई थींदो। मुंहिंजी या अव्हां जी ख़्वाहिशनि सां कुझु बि न थींदो। मकानी निज़ाम ऐं इदारनि खे बाख़्तियार बणाइण पीपल्स पार्टी जो मंशूर आहे। सिंध वाहिद सूबो आहे जिते मकानी हुकूमतूं मौजूदु आहिनि। सिक्योरिटी फोर्सिस जो के पी के ऐं बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियुनि मूजिबि के पी के जे इलाइक़े बनून ऐं लाडा में 7 दहशतगर्दनि खे जहनुम भेड़ो कयो वियो। बलोचिस्तान जे इलाइक़े खुशदार में ऑपरेशन दौरान 4 दहशतगर्द मारिजी विया। दहशतगर्दनि जो हिकु थाक बि तबाह। बारूदी मवाद हथ वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां कामयाब ऑपरेशन ते फोर्सिस खे भेटा पेश। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में क़ौम फोर्सिस सां गॾु बीठल आहे। नवाज लीग पारां इफ़्तिखार गिलानी खे आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म बणाइण जो फ़ैसिलो। वज़ीर आज़म हाउस में मुशावरत बाद इफ़्तिखार गिलानी खे वज़ीर आज़म बणाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो। बैरिस्टर इफ़्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट सीट ते चूंडियो वियो आहे। आज़ाद कश्मीर जे नए वज़ीर आज़म जी चूंड सुभाणे थींदी।

0: मीरपुर माथेलो भरसां ॻोठाणे ज़ाल खे क़तल करण बाद पाण खे गोली हणी आपघात करे छॾियो। ॻोठु मीर ख़ान अब्दुल जबार पंहिंजी घरवारी राबिया खे गोली हणी क़तल कयो। क़तल बाद फरार थी वियो। पाण खे गोली हणी आपघात करे छॾियो। वारे में ज़री पाणी जे खोट ख़िलाफ़ जे यू आई जे सर ते एहतजाज। फाज़ल राउ चौक ते क़ुरान ख़्वानी करे एहतजाजी धरणो हयो वियो। वारे तालके मां पाणी खोट ख़तम करण जो मुतालबो। अॻवाणनि चयो आहे त वारे तालके जे शाख़ में ज़री पाणी न पहुतो त असां वारे जी हर शाख़ ते क़ुरान शरीफ़ जा ख़त्मा पढ़ी हुकुमरान जे ख़िलाफ़ एहतजाज कंदा रहंदासीं। आज़ाद कश्मीर में शहीद थियल रेंजर सहलकार शाहनवाज अली नायक जे बबर लोहे वेझो जनाज़े नमाज़ बाद तकफ़ीन। जनाज़े नमाज़ में पाकिस्तान रेंजर्स जे आफ़िसरनि जवाननि ऐं शहरनि जी वॾे अंग में शिरकत। आज़ाद कश्मीर में रोड क्लीयरेंस ऑपरेशन दौरान बबर लोहे वासी रेंजर सहलकार शाहनवाज अली नायक खे हथियारबंदनि शहीद कयो। नसीराबाद में फूड खाते जे नाजाइज़ ॾाढाइनि ख़िलाफ़ सिंध बलोचिस्तान राइस मिल्स एसोसिएशन पारां सिंध बलोचिस्तान राइस मिल्स एसोसिएशन जो इंडस हाईवे ते धरणो। राइस मिल्स काज़ी पेट्रोल पंप वटि टायरनि खे बाहियूं ॾेई रोड ब्लॉक करे धरणो हयो वियो। अॻवाणनि चयो त ज़्यादतियूं बंदि न थियूं त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। मीरपुर माथेलो वेझो हथियारबंदनि हथां फुर मज़ाहमत ते पीरसन क़तल। ॻोठु गुल मोहम्मद गबोल वासी पीरसन मीर मोहम्मद गबोल खे हथियारबंदनि जरगबाल बणाए फुर लुट कई। मज़ाहमत करण ते हथियारबंदनि पीरसन खे क़तल करे फरार थी विया। मक़तूल जो भाउ जब्बार पिताफ़ी चयो आहे त भाउ खे फुर मज़ाहमत ते क़तल कयो आहे। खैबर में सरकारी दवाऊं सरकारी अस्पतालनि खे विकिरो करण जो इंकशाफ़। KTN न्यूज़ रिकॉर्ड हथ करे वरितो। खैबर ऐं उडेरुलाल जूं अस्पतालूं PPHI में ज़िमकरण थियण बाद बचियल दवाऊं विकिरो कयूं वयूं। मेन स्टोर मां दवाऊं जारी करण बाबति रिपोर्ट KTN न्यूज़ हासिल करे वरिती। सरकारी स्टॉक मां दवाऊं ॿीहर ख़रीद करण सबबि क़ौमी ख़ज़ाने खे लखें रुपियनि जो नुक़सान। ज़रियनि जो चवणु आहे त बचियल दवाऊं DHQ मटियारी ऐं THQ हाला खे विकिरो करे ॾिनियूं वयूं आहिनि। पिथोरो शहर में पाणी पहुचाइण लाइ मिटराव केनाल में लॻंदड़ पाइप लाइन ख़िलाफ़ हज़ारे पोछड़ी जे आबादगारनि जो धरणो। खेल आबादगारनि एसोसिएशन जे सॾु ते आबादगारनि ऐं रहवासियुनि एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। आबादगारनि जो चवणु आहे त मिटराव केनाल में लॻंदड़ पाइप लाइन इलाइक़े वासियुनि लाइ क़ातिल आहे। पोछड़ी जी ज़मीन बंजर बणिजी वेंदी। नौशेरो फिरोज़ में मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे रहवासियुनि जो बुनियादी सहूलियतनि जे खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। ॻोठु चिले वारा चांडिया लिंक रोड जे मरमत न थियण ख़िलाफ़ 25 ॻोठनि जे रहवासियुनि एहतजाज कयो। मुज़ाहिन मूजिबि ॻोठु बुनियादी सहूलियतनि खां महरूम आहे। चूंडियल नुमाइंदा गुम आहिनि। मसला हल कया वञनि। कुंडरीअ में कोली बिरादरी जो बासर ऐं पुलिस जे नाजाइज़नि ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली। ॻोठु हाजी मोहम्मद रफ़ी काराणी जे रहवासियुनि प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। संदनि चवण हो त बासर ज़मीनदार चौधरी हुमायूं सत्तार ॿारनि खे गार गन कई, हवाई फायर कया, पुलिस पारां इंसाफ़ करण बदिरां उल्टो असां ते केस दाख़िल करे धमकायो पियो वञे। असांखे घरनि मां बेदख़ल करे असांजो माल बासर पुलिस जी मदद सां खणी वियो आहे। आला इख़्तियारियूं नोटिस वठी शफ़ाफ़ जाच कराए इंसाफ़ ऐं तहफ़ुज़ फराहम कनि। लाड़काणे में ग्रेंड हेल्थ अलायंस जे सॾु ते मुतालबनि जी मंटल एहतजाजी रैली। अॻवाणनि चयो आहे त सिहत जे इदारनि खे PPHI हवाले करण बदिरां उन्हनि में सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि। सिहत जो शोबो अॻे केतिरनि ई मसइलनि ऐं मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। मसइलनि खे नज़रअंदाज करण बदिरां हुकूमत हल लाइ संजीदा क़दम खणे। मिठीअ में UC चेयरमैन इस्तीफ़ा ॾेई लाइव स्टॉक खाते में नायब कासिद जी नौकिरी वठी छॾी। छाछरो तालुके जे यूनियन काउंसिल जे चेयरमैन अली नवाज़ इस्तीफ़ा ॾेई UC चेयरमैनशिप तां इस्तीफ़ा ॾींदड़ अली नवाज़ चौकीदार जी नौकिरी ज्वाइन करे वरिती। लाइव स्टॉक खाते जे डिप्टी डायरेक्टर तस्दीक कंदे चयो आहे त अली नवाज़ चेयरमैनशिप तां इस्तीफ़ा ॾेई नायब कासिद जी नौकिरी ज्वाइन कई आहे। ऐं नेपाल में बोड ऐं लैंड स्लाइडिंग तबाही मचाए छॾी। फोतियुनि जो अंगु वधी 299 थी वियो। 260 परॾेहनि समेत 826 शहरी बदस्तूर गुम। ॻोल्हा जारी। नेपाल ऐं तिब्बत में सरहदी इलाइक़े में बोड ऐं लैंड स्लाइडिंग सबबि 299 ॼणा अजल जो शिकार थिया। नेपाल ऐं चीन जो गुम थियल माण्हुनि जी ॻोल्हा लाइ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे. मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे. मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस. बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी. हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन्हनि में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो, जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्द मां जेके महफ़ूज़ रहनि.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.

हमें एक उम्र लगती है, कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: Chief of Army Staff and Chief of Defense Forces, Field Marshal Sayyid Asim Munir, visited Tehran on 24th August as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts to facilitate an end to the U.S.-Iran conflict and renewed efforts for reopening the Strait of Hormuz. It claims by certain quarters that the Chief of Army Staff and the Chief of Defense Forces visited Iran as envoy of President Trump or the U.S. are misleading and factually incorrect, as his visit was undertaken purely in the context and backdrop of Pakistan's ongoing role as a mediator.
1: जारी सालसी वारे कोशिशों जो हिस्सों हो दौरे के अमेरिका से गडण वाली खबरों बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ए ईरान जो व्यापार जारी है, एक तरफिन पाबंदियों के अमल करण जा पाबंद ना ही पर डेई तर्जुमान ताहिर हुसैन इंद्राबी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर ट्रंप की नुमाइंदे तौर तेहरान जो दौरो करण वारी खबरों के रद्द करते है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ए घरू वजीर मोहसिन नकवी जो ईरानी दौरो चिकाण में घटताई वारे पाकिस्तानी कोशिशों जो हिस्सों हो। पाकिस्तान रियासती सतह से अफगानिस्तान से गालू करण तैयार है। अफगानिस्तान के पेंजी सरजमीन पाकिस्तान खिलाफ इस्तेमाल थे रोकणो पवंदो।

0: दस जने अभी गायब हुए हूँ। किसी वर्जन में उन्होंने
1: डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गया, और उस एसएचओ नदीम ने बोला है हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते।
0: हमने अभी यार हमें दो नहीं देखी है ना बच्चों के टुकड़े देखे।
2: वफाकी राजधानी इस्लामाबाद जे एम्स अस्पताल में बाहि लगण वाले वाक़े जो जिम्मेवार केर? वफाकी हुकूमत वेडी भी चोड़ा मासूम बारन जे सड़ी फोत थियण वाले वाक़े जा जिम्मेवार जाहिर न किया? साने जी जांच लाए चूंडल कमेटी जांच शुरू करे छी। अमले खां लिखत में बयान तलब, सीसीटीवी फोटेज भी तहवील में वठी छी। कानून वाले वजीर सेनेटर आजम नसीर तरण है तो जिंदगी की का भी कीमत ना है। साने की जांच बाद जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई थी। सुभाने ताई शुरुआती रिपोर्ट अची वेंदी। कौमी असेंबली की सेहत बाबत कमेटी पिम्स में एसी में बाहि लगण वारन बयान के शकी करार दे छो। पिम्स अमले के बयान में भी तजाद की दावा। स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर पारा पिम्स जो दौरो, बाहि वाक़े जा तफसील मालूम किया। कमेटी चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार बलानी अमले के बयान में तजाद है। आलिया कामरान अमले के बयान में लगी रो है खेन रटो हणाये पो है। डॉक्टर शाजिया सोबिया अमले जा बयान मुतजाद हैं, लगे तो ड्यूटी ते मौजूद न हुआ।

एम्स अस्पताल इस्लामाबाद में पेश आयल वाक्य अंताई दिल धड़ींदड़ आहे। मुल्क में अस्पतालनि जूं हालतूं बहितर करण जी ज़रूरत आहे। असांजी ज़िमेवारी सिंध जी हद ताईं आहे। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ कोरंगी जे दौरे दौरान मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल मुराद अली शाह चयो त सिंध असेंबली छपेरा सूबे जे विरागे ख़िलाफ़ ठहराउ पास कयो आहे, जंहिंखे शोक आहे ॿीहर ठहराउ आणे। सिंध जा माण्हू छा था चाहिनि? सिंध जो अवाम जेको चाहींदो उहो ई थींदो। मुंहिंजे या अवां जी ख़्वाहिश सां कुझु न थींदो। मकानी निज़ाम ऐं इदारनि खे बाख़्तियार बणाइण पीपल्स पार्टी जो मंशूर आहे। सिंध वाहिद सूबो आहे जिते मकानी हुकूमतूं मौजूदु आहिनि।

रांची के व्यापारी मीर रजा केस जांच लाए जोड़ियल अदालती कमीशन कार्रवाई शुरू कर छी। केस से लागापियल धुरियन के नोटिस जारी। अदालती कमीशन मीर रजा के वारिसन के 28 अगस्त से पेश थियण लाए नोटिस जारी कर छो। संदन वकील जिब्रान नासिर के भी नोटिस जारी किया वो। कमीशन तरफा सिंध हुकूमत के फोकल पर्सन के भी नोटिस जारी किया वो। कमीशन की कार्रवाई जो सुभाने पहरियों ढी हों। कमीशन टर्म्स एंड कंडीशंस तहत जांच ए कार्रवाई 30 दिन अंदर मुकम्मल कंदी। मीरपुर माथेरो भरसा गोठाने जाल के कतल कर बाद पान भी गोली हणी आपात कर छो। गोठ मीर खान वसेर में अब्दुल जब्बार वसेर पेंजी घरवारी राबिया के गोली हणी कतल कर जाल के कतल कर बाद जवाबदार अब्दुल जब्बार वसेर पान के भी गोली हणी आपात कर। केवर में सरकारी दवाओं सरकारी अस्पताल के ही विक्रो करने जो इंकशाफ के चे न्यूज रिकॉर्ड हथ करे वरतो। केवर ए उबेरो लाल जो अस्पतालों PPHI में जिम थियण बाद बचल दवाओं विक्रो कई हुई। मेन स्टोर में दवाओं जारी करण बाबत रिपोर्ट के चे न्यूज हासिल करे वरती। सरकारी स्टॉक में दवाओं बीहर खरीद करण सबब कौमी खजाने के लखे रुपयन जो नुकसान। जरिए जो चवण है तो बचल दवाओं DHQ वटियारी ए THQ हाला के विक्रो कर दिन हुई।

सिरो फिरोज में मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे रवासियुनि जो बुनियादी सहूलियतनि जी खोट ख़िलाफ़ु एहतजाज। ॻोठ छली वारा चांडिया लिंक रोड जी मरम्मत न थियण ख़िलाफ़ु 25 ॻोठनि जे रवासियुनि एहतजाज कयो। ज़ाहिर मुजिबि ॻोठ बुनियादी सहूलियतनि खां महरूम आहिनि, चूंडियल नुमाइंदा गुम आहिनि, मसाला हल कया वञनि। में ग्रैंड हेल्थ अलायंस जे सटे मुतालबनि जी मुंहिंताल एहतजाजी रैली। अॻवाणनि चयो त सिहत जे इदारनि खे PPHI हवाले करण बदिरां हिननि में सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि। सिहत जो शोबो अॻे केतिरनि मसलनि ऐं मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। मसलनि खे नज़रअंदाज करण बदिरां हुकूमत हल लाइ संजीदा क़दम खणे। हैदराबाद में 3 ॾींहं अॻु क़तल कयल नौजवान अख़्तर चांडियो जे क़तल जे इल्ज़ाम हेठि संदसि ॿ दोस्त गिरफ़्तार। ज़रियनि मूजिबि पुलिस हुसैन पंचपुरी ऐं दीन मोहम्मद जगताणी खे गिरफ़्तार कयो। ॿिन्ही ॼणनि खे सां न ॾियण ते अख़्तर चांडियो खे क़तल करण जो इतराफ़ु कयो आहे। पुलिस ॿिन्ही जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी ज़ाहिर न कई।

सबब 276 शहरी बदस्तूर को ओला जा रही है। नेपाल ऐं तिब्बत जे सरहदी इलाइक़े में बोट ऐं लैंडस्लाइडिंग सबब 279 ॼणा अॼु जो शिकार थिया आहिनि।

0: जी मार्ग जाय सदम था रूस पटनी के खबरदार कर सके उसी पटे तर्जमान जो है तो यूक्रेन सागर बयान तक में भी बरतानवी अड्डन के निशानों बढ़ा दिलो बरतानिया कुछ दिन पहले यूक्रेन के जदीद मिसाइल जो ब्लू प्रिंट देण जो ऐलान किया
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे इन जो जवाब बिल्कुलु आसान आहे इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहो बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर इहो सबबु न बणंदो
3: सिंध के माथे का झूमर
4: जी एफ एम 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज़

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध में मौसमियाती खतरा वधी रहा है। हर साल 18.6 अरब डॉलर जो माशी नुकसान थी सके तो माहौलियाती माहिरन खबरदार करे छो। कराची में मौसमियाती तब्दीली बाबत तकरीब में पेश कल रिपोर्ट में चुको है मौसमियाती तब्दीली के मुंह दियण लाए 2025 ताईं 6.4 अरब डॉलर की सीड़पकारी घुर्बल है। सिंध में तवानाई जी मुंतकली लाइ वक्त तेजी से घटी रो है और मौसमियाती खतरा वधी रहा है। सिंध का 2.5-3 अरब डॉलर जो माशी नुकसान थी सके तो जो वे वजीर मुराद अली शाह से रेलवे वे वजीर हनीफ अब्बासी की मुलाकात। सूबे में रेलवे नेटवर्क के महफूज और बेहतर पाने से गाल बोल। वे वजीर जदीद रेलवे निज़ाम से आवाम के सस्ती सफरी सहूलत मिली। रेलवे निज़ाम के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी लाइ सिंध हुकूमत वफाक से सहकार कंदी।

कराची जे वापारी मीर रज़ा केस जी जांच लाइ जोड़ियल अदालती कमीशन कार्रवाई शुरू करे छॾी। केस सां लाॻापियल धुरियन खे नोटिस जारी। अदालती कमीशन मीर रज़ा जे वारिसनि खे 28 अगस्त ते पेश थियण लाइ नोटिस जारी करे छॾियो। संदन वकील जिब्रान नासिर खे बि नोटिस जारी कयो वियो। कमीशन तरफ़ां सिंध हुकूमत जी फोकल पर्सन खे बि नोटिस जारी कयो वियो। कमीशन जी कार्रवाई जो सुभाणे पहिरियों ॾींहुं हूंदो। कमीशन मीरपुर माथेलो भट सां ॻोठाणे ज़ाल खे क़तल करण बाद पाण खे गोली हणी आपघात करे छॾियो। ॻोठ मीर ख़ान वसेर में अब्दुल जब्बार वसेर पंहिंजी घरवारी राबिया खे गोली हणी क़तल कयो। ज़ाल खे क़तल करण बाद जवाबदार अब्दुल जब्बार पाण खे बि गोली हणी आपघात कयो। खेवर में सरकारी दवाऊं सरकारी अस्पतालनि खे ई विकिरो करण जो इंकशाफ़। KTN न्यूज़ रिकॉर्ड हथु करे वरितो। खेवर ऐं अडेरोलाल जूं अस्पतालूं PPHI में सिम थियण बाद बचियल दवाऊं विकिरो कयूं वयूं।

नेपाल में बोड ऐं लैंडस्लाइडिंग तबाही मचाए छॾी। पोतियुनि जो अंगु वधी 659 थी वियो। 260 पटेरियनि समेत 1300 शहरी बदस्तूर हुन। ओला जारी। नेपाल ऐं तिब्बत जी सरहदी इलाइक़े में बोड ऐं लैंडस्लाइडिंग सबबि 359 ॼणा अजल जो शिकार थिया। नेपाल ऐं चीन जो गुम थियल माण्हुनि जी ॻोल्हा लाइ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
2: हर दिन हर पहर ज़िंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो आहे असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
1: हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

लोग तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: ना मुझसे बात करो, आओ ना, मैं बात करूं ना आपकी बात।
1: मिनिस्टर साहब,
2: बच्चों को
3: वफाकी राजधानी इस्लामाबाद के फिल्म अस्पताल में फायर लगने वाले वके जो जिम्मेवार के वफाकी हुकूमत वेडी भी 14 मासूम मरण की सड़ी फोत थियण बारे वाके जा जिम्मेवार जाहिर न किया। साने की जांच लाए जोड़ियल कमेटी जांच शुरू कर छी। हमले का लिखित में बयान तलब, सीसीटीवी फुटेज भी तहवील में वी छी। कानून वाले वजीर सेनेटर आजम नसीर तरण है तो जिंदगी की का भी कीमत ना, साने की जांच बाद जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई थी। सुबह ती शुरुआती रिपोर्ट अची वी। कौमी असेंबली की सेहत बाबत कमेटी पिम्स में एसी में बाह लगण वारे बयान के शकी करार दई छो। पिम्स असेंबली के बयान में भी तजाद की दावा, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स पारा पिम्स जो दौरों बाहे वाक्य जहा तफसील मालूम कया। कमेटी चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार मुरानी अमले के बयान में तजाद है। आलिया कामरान अमले के बयान में लगी रो है कें रटो हणा पो है। डॉक्टर शाजिया सोफिया अमले जहा बयान मुतजाद है, लगे तो ड्यूटी से मौजूद न हुआ।
4: हम कल देखेंगे असेंबली का व्यू अपना क्या है, सूबे की आवाम को चाहेगी। चेयरमैन गुलाम मुस्तफा जरदारी साहब कह चुके हैं कि जो इस मुल्क की आवाम चाहेगी सिर्फ वो होगा मेरे आपके या किसी और के कहने से काम आ सके। सिर्फ असेंबली 6 दफा पास और आखिरी तो हमने भी फरवरी 2026 में बड़ी डिटेल करा था, जिसमें अगर आपको पढ़ लें जितनी बाल की सिंध के मानूम जी पाकिस्तान की पुलिस पार्टी कही है जो चेयर करे को तो सभी अला से असानी ताकत नहीं तय अवधि
3: जैसी ख्वाहिश से कुछ नो नव सुबह बाबत जैसे शोक है ठहराव आने सिंध असेंबली 6 भेरा सूबे के विरागे खिलाफ ठहराव पे पास किया है। सिंध जहा मू चाहन खबर है, सिंध जो आवाम जो चाहो वही मुझे या अवान की ख्वाहिश से कुछ नो। वे वजीर मादरी शाजी इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ कोरंगी के दौरे दौरान मीडिया से गाल बोल मादरी शाह तो मकानी निज़ाम में इदारन के बाख्तियार बनाने पीपल्स पार्टी जो मंशूर है। सिंध वाहिद सूबो है जिते मकानी हुकूमतू मौजूद हैं। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में पेश आयल वाक्यो इंतहाई दिल डारींदड़ है। मुल्क में अस्पतालों जो हालतू बेहतर करने की जरूरत है।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: घर का एक बाल नहीं जला, सिर्फ बच्चे जल लेते हैं।
1: मुझसे बात करो, आओ ना मुझसे बात करो, आओ ना, मैं
2: सुन रहा हूँ
1: आपकी बात।
2: मैं सुन रहा हूँ।
3: वफाकी राजधानी इस्लामाबाद जी पीएमएस अस्पताल में बाहि लगण वारे वाक़े जो जिम्मेवार केर? वफाकी हुकूमत वेठ ई पी 14 मासूम बारन जे सड़ी फोत थियण वारे वाक़े जा जिम्मेवार ज़ाहिर न कया। साने जी जांच लाइ जुड़ियल कमेटी जांच शुरू करे छॾी। अमले खां लिखत में बयान तलब। सीसीटीवी फुटेज बि तहवील में वठी छॾी। कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तर चयो आहे त ज़िंदगीअ जी का बि क़ीमत नाहे। साने जी जांच बाद ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी। सुभाणे ताईं शुरूआती रिपोर्ट अची वेंदी। क़ौमी असेंबली जी सिहत बाबति कमेटी पिम्स में एसी मां बाहि लॻण वारनि बयाननि खे शकी क़रार ॾेई छॾियो। पिम्स असेंबली जे बयाननि में बि तसाद जी दावा। स्टैंडिंग कमेटी जे मेंबर्स पारां पिम्स जो दौरो। बाहि वाक़े जा तफ़सील मालूम कया। कमेटी चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार बुराणी चयो त अमले जे बयाननि में तसाद आहे। आलिया कामरान चयो त अमले जे बयाननि मां लॻी रहियो आहे त खेन रटो हणायो वियो आहे। डॉक्टर शाज़िया सोबिया चयो त अमले जा बयान मुतज़ाद आहिनि, लॻे थो ड्यूटी ते मौजूदु न हुआ।
4: और आखिरी समय में फरवरी 2020 में बड़ी डिफिकल्ट रहा था,

0: जिसमें अगर आपके फंड में इतनी बार की सिंध के मालूम जी पाकिस्तान की कुछ पार्टी कही है जो चेक करे सही ताकत नहीं करना वधीक
1: कंहिं ख्वाहिश से कुछ न थो नवन सूबन बाबत जैसे शौक है ठहराव आने सिंध असेंबली छह पेरा सूबे के विराग के खिलाफ ठहराव पास किया है सिंध जहा मू चाहन खबर है सिंध जो अवाम जो चाहो उ मुझी या अवाज की ख्वाहिश से कुछ नो वे वजीर माद अली शाह जी इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ कोरंगी के दौरे दौरान मीडिया से गाल बोल माद अली शाह तो मकानी निजाम इदार के बाख्तियार बनाए पीपल्स पार्टी जो मंशूर है सिंध वाहिद सूबो है जिते मकानी हुकूमत मौजूद हैं पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में पेश आयल वाक्यो इंतहाई दिल डारींदड़ है मुल्क में अस्पताल जो हालतों बेहतर करने की जरूरत है
2: चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर visited Tehran on 24th August as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts to facilitate an end to the US-Iran conflict and renewed efforts for reopening the Strait of Hormuz. At claims by certain quarters that the Chief of Army Staff and the Chief of Defense Forces visited Iran as envoy of President Trump or the US are misleading and factually incorrect. As his visit was undertaken purely in the context and backdrop of Pakistan's ongoing role as a mediator.
1: फील्ड मार्शल जो ईरानी दौरो अमन लाइ जारी सालसी वारियन कोशिशन जो हिस्सो हो दौरे के अमेरिका से गढ़ण वाली खबरों बेबुनियाद हैं पाकिस्तान ईरान जो व्यापार जारी है एक तरफे पाबंदियों के अमल करण जा पाबंद ना बड़े तर्जुमन टायरसन द्राबी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर ट्रंप के नुमाइंदे तौर तेहरान जो दौरो करण वाली खबरों के रद्द करते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ए घरू वजीर मोहसिन नकवी जो ईरानी दौरो चिकतान में घटताई वारी पाकिस्तानी कोशिशों जो हिस्सो हो पाकिस्तान रियासती सतह से अफगानिस्तान से गालू कर तैयार है अफगानिस्तान के पैंती सरजमीन पाकिस्तान खिलाफ इस्तेमाल करने के रोकनो पवन कतरी वजीर आजम ईरान के अहम दौरे से तेहरान पहुंची हो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल आल सानी जो तेहरान पहुंचने से बड़े वजीर अब्बास राख चादर भाग किया मुलाकात दौरान वितरफन लागापन समेत खत्े की सूरत से गालू कई हुई कतरी वजीर आजम ईरान ने सदर स्पीकर अस्करी क्यादत से मुलाकातों भी कंदो अमरीका ईरान विच में जारी चिकताण के खात्मे समेत खत्े की सूरत से गालू कई व्यों अपना हरमुसी बहाली वो मामलो भी होर हेठ इंद सिक्योरिटी फोर्सेस जो खैबर पख्तूनख्वा ए बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि खिलाफ़ कार्रवाइयूं 11 दहशतगर्द मारिजी विया सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब के पी जे इलाइक़े बनू में लाटा में 7 दहशतगर्दनि खे जहनुम भेड़ो कयो वियो बलोचिस्तान जे इलाइक़े खुज़ार में ऑपरेशन दौरान 4 दहशतगर्द मारिजी विया दहशतगर्दनि जो हिकु थाक बि तबाह बारूदी मवाद हथ वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां कामयाब ऑपरेशन्स ते फोर्सिस खे भेटा पेश शहबाज़ शरीफ़ चयो त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में क़ौम फोर्सिस सां गॾु बीठल आहे बैरिस्टर सैयद इफ्तखार अली गिलानी की आज़ाद कश्मीर के वजीर अजम तौर नामजदगी से नून लीग आज़ाद कश्मीर इख्तलाफन जो शिकार राजा फारूक हैदर वट पार्टी के सीनियर अगवाणन जो इजलास आज़ाद कश्मीर के नामजद वजीर अजम से खदशा जाहिर राजा फारूक हैदर ए नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर जो बैरिस्टर इफ्तखार गिलानी के वोट न दियण जो ऐलान फारूक हैदर चयो है जो कुछ थी सुने सभी के खबर पैजी वी

जेकबाद में टे ढीह अग कतल कल नौजवान अख्तर चांडो के कतल के इल्ज़ाम हेठ संदस ब दोस्त गिरफ़्तार जरियन मूज पुलिस हुसैन बख्श बिरोई और दीन मोहम्मद जकरानी के गिरफ़्तार किया बिन्हीं जड़न पैसा न दियण से अख्तर चांडो के कतल कर इतराफ़ किया है पुलिस बिन्हीं जवाबदार के गिरफ़्तारी जाहिर न कई।

0: नेपाल में बोट ऐं लैंडस्लाइडिंग तबाही मचाए छॾी। पोतियुनि जंग वधी 368 थी वियो। 260 पडेन समेत 1300 शहरी बदस्तूर गुम। ॻोल्हा जारी। नेपाल ऐं तिब्बत जे सरहदी इलाइक़े में बोट ऐं लैंडस्लाइडिंग सबबि 369 ॼणा अचल जो शिकार थिया। नेपाल ऐं चीन जो गुम थियल माण्हुनि जी ॻोल्हा लाइ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूक्रेन रूस खिलाफ़ बरतानवी हथियार ऐं सहूलियतूं इस्तेमालु कयूं त बरतानिया जा फ़ौजी भाग जाइज़ हदफ़ हूंदा। रूस बरतानिया खे ख़बरदार करे छॾियो। रूसी परॾेही तर्जुमान चयो आहे त यूक्रेन सां गॾु ॿियनि मुल्कनि में बि बरतानवी अॾनि खे निशानो बणायो वेंदो। बरतानिया कुझु ॾींहं पहिरीं यूक्रेन खे जदीद मिसाइल जो ब्लू प्रिंट ॾियण जो ऐलान कयो।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
4: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
5: GAFM 88
4: नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।